0: आकाशवाणीचे नागपूर केंद्र हे 512.8 मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर सकाळचे 6 वाजत आहेत. दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या आम्ही सहक्षेपित करू काही क्षणातच.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की. कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है. भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है. जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है. खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं. उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही.
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है. और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है. और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे. 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना.
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों

0: का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झालीत। प्रसारित करीत आहोत मराठी भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अर्चना। श्रोतेहो, या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूया मन्नाडे आणि सहकाऱ्यांनी गायलेली संत नामदेवांची अभंगरचना, स्वरबद्ध केली आहे अण्णा जोशी यांनी।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगू के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी

0: की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने

0: विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की

0: आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारतीवरून एकाच वेळी प्रसारित करीत आहोत लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर। श्रोतेहो नमस्कार, माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। श्रोतेहो, आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व, आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक किल्लूरकर। श्रोतेहो, विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व याविषयाशी संबंधित आपल्या मनात काहीही शंका किंवा प्रश्न असतील तर आपण लगेच फोन करून विचारू शकता। त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067 2560101 आणि 2529266 आणि STD कोड आपण जाणताच 0712। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर। मॅडम नमस्कार, आजच्या कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत।
1: थँक्यू
0: मॅडम। पालकत्व म्हणजे अगदी रोज एक नवीन पेपर असं म्हणायला हरकत नाही, कारण रोजच काहीतरी वेगळ्या समस्या आपल्या समोर येतात आणि आपल्याला त्याचं समाधान करावं लागतं। तर आपण अगदी लहान बाळ घेऊ किंवा 16 वर्षाचा युवक घेऊ तर दोघांसोबत आपण एकसारखं वागू शकत नाही, त्यांच्यासाठी पालकत्व वेगळंच लागतं। ते तर हे का आणि कसं?
1: करेक्ट। ज्या प्रकारे आपला बॉडी साईज चेंज करतो त्याच प्रकारे आपला ब्रेन साईज चेंज करतो। तर फॉर एक्झाम्पल, जर का आता इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी है ना, जो 0-3 इयर्स पकड़ लो टॉडलर एज के पहले, उनका ब्रेन जिस तरीके से डेवलप हुआ है और हो रहा है वर्सेस 3 साल से 6 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चे दिखते ही अलग हैं, फिजिकली चेंज हो रहे हैं, तो वैसे ही अंदर से शरीर चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से पेरेंटिंग अगर हम करें, जो पहले शायद हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं थी, बट अभी साइंस है जो हमको बहुत सारी रिसर्च का डेटा दे रहा है, साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, ब्रेन कैसे चेंज होता है और उस समय परवरिश से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हमारे पास साइंस का इतना इन्फॉर्मेशन है तो हमने यूज़ करना चाहिए, है ना। सो दैट्स वाई आई फील माइंडफुली अगर हम पेरेंटिंग करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने ये भी देखा है कि उन बच्चों में जिनमें माइंडफुली पेरेंटिंग की गई है, अडल्टहुड में उनको मानसिक बीमारियां, मानसिक तकलीफें बहुत कम हुई हैं। और जिनको हाँ अरे ऐसे ही चलता है, ये तो होते रहता है, अरे हमको भी तो ऐसे ही परवरिश की थी माँ बाप ने, जिन माँ बाप ने इस एटीट्यूड से परवरिश की हुई है उनके बच्चों को अडल्टहुड में बहुत
0: प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे।
1: और सिर्फ खुद के या प्रोफेशनल नहीं बट पर्सनल रिलेशनशिप्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव राइट। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि हर एज ग्रुप को समझ के, उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स समझ के अगर हम उस हिसाब से पेरेंटिंग करें तो हम फ्यूचर जनरेशन को एक बहुत अच्छा पूंजी देके जाएंगे।
0: माइंडफुली हे सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द आहे, कारण जर तुम्ही अगदी समजून मुलांची मानसिकता समजून जर त्यांचं पेरेंटिंग केलं तर ते नक्कीच फायदेशीर ठरेल।
1: 100%।
0: श्रोतेहो, आपण ऐकत आहात माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम। आजचा विषय आहे विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व, आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक किल्लूरकर। या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067 2560101 आणि 2529266 STD कोड 0712। मॅडम, तुम्ही आता सांगितलं की माइंडफुल पॅरेंटिंग खूप महत्वाचं आहे, तर मग आपण अगदी नवजात बाळापासून तर 3 वर्षांच्या मुलांपर्यंत आपण काय करू शकतो?
1: राईट, राईट ऑन ट्रॅक, एकदम सही सवाल से हम शुरू करें। बट वो सवाल के पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी अपने लिसनर्स को। जिस तरह से हमारी फिजिकल नीड्स होती है ना, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, उस तरह से हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है। सो अगर हर पेरेंट ये 4 साइकोलॉजिकल नीड्स समझ लें कि ये 4

0: हर उम्र में बच्चों को लगता है। सबसे पहला है सेफ्टी, सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं बट इमोशनल सेफ्टी।
1: अच्छा
0: मतलब मुझे आपसे कितना डर लग रहा है, मैं बेझिझक मेरे
1: आपसे
0: माँ
1: कुछ
0: बाप को हाँ
1: कह सकती हूँ।
0: एक्सप्रेस कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है। फिर है कनेक्शन, कनेक्शन यानी जुड़ाव, सिर्फ लगाव नहीं जुड़ाव। तो अगेन वो भी फिजिकल नहीं, आजू बाजू में मम्मी है फोन में लगे हुए हैं, पापा अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, बेबी खेल रहा है, इट्स नॉट द सेम थिंग एज कनेक्शन।
1: कनेक्शन बराबर।
0: तो वहाँ पे हाउ द चाइल्ड फील्स सीन, मुझे समझ के देखा जा रहा है, उस तरह का जो फील है वो
1: वो
0: कनेक्शन।
1: कनेक्शन।
0: थर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब सिंपलेस्ट भाषा में बोला जाए तो स्वराज्य, कि मैं छोटे छोटे डिसीजंस
1: ले
0: मेरे,
1: सकता हूँ।
0: हाँ करेक्ट। तो बेसिक थिंग्स कि आज किस क्या कपड़े पहनने, कहाँ घूमने जाना है, आपको ये बॉटल लेके जानी है या ये लेके जाना, सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल डिसीजंस, बच्चे के हिसाब से बहुत बड़े हैं बट वो खुद वो डिसीजंस ले पा रहे हैं,
1: अच्छा।
0: राइट। फोर्थ है वैलिडेशन। वैलिडेशन यानी मान्यता, मतलब आपकी भावनाएं, आपके जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो वैलिड है बेटा। मतलब हम जनरली क्या कर देते हैं गलती में, कि अरे ये सबको होता है, इस इतनी सी बात पे चिढ़ना पड़ता है क्या, राइट। किसी को बोल दिया कि टीचर ने ना उसको ज़्यादा ध्यान दिया, मुझे नहीं दिया, एंड बच्चे ने घर आके बोला लाइक हाँ तो ठीक है ना,
1: होता ही
0: इतनी
1: रहता है
0: होते
1: ये।
0: रहता है, इतनी सी बात पे बुरा मानना है। तो हमने उनके इमोशन को ऑल ओवर निगलेक्ट कर दिया।
1: अच्छा।
0: सो यही बच्चा बड़ा होके इस टाइप का एडल्ट बनेगा जो खुद की भावना को निगलेक्ट करता जाए, और सडनली फिर बॉम्ब फूटेगा, सडनली गुस्सा आएगा, सडनली रेज आएगा, और उन्हें नहीं पता कि मेरे को ये भावना कैसे हैंडल
1: और
0: करनी है।
1: निगेटिविटी भी बहुत आती है उधर।
0: एग्जैक्टली। सो ये चार नीड्स है, सेफ्टी, कनेक्शन, वैलिडेशन और ऑटोनॉमी। अगर हम ये चार नीड्स हर उम्र में उनके हिसाब से समझ के ले लें तो आप बहुत बेहतरीन पेरेंटिंग कर देंगे, आपको किसी
1: और आगे चलकर उनको कुछ
0: यस
1: तकलीफों का सामना भी नहीं
0: यस
1: करना पड़ेगा।
0: वही आता है आपका जो 0 to 3 वाला क्वेश्चन है।
1: हाँ डॉक्टर, हम हमारे श्रोताओं को बता
0: यस
1: दें। श्रोतियों, आप एकत आहात माइंड ओवर मैटर क्लिनिक धंतोली नागपुर। हेलो डॉक्टर, हा लाइव फोन इन कार्यक्रम। आजचा विषय आहे विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व। याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक किल्लूरकर। या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067256101 आणि 5529266। फोन नंबर्स पुन्हा एकदा 6940067 2560101 आणि 2529266 आणि STD कोड आपण जाणताच 0712। मॅडम, आपने अभी आपने चार नीड बताई, तो हर एक उम्र के हिसाब से ये चार जो नीड है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं?
0: तो अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, जो 3 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है सेफ्टी, कि मैं जहाँ हूँ, जो मेरे प्राइमरी केयर गिवर है, कई जगह वो मम्मी पापा होते हैं, कई जगह वो दादी
1: दादा
0: दादा,
1: दादी।
0: तो उनके साथ मैं सेफ हूँ, फिजिकली और इमोशनली सेफ हूँ। और उस उम्र के बेबीज़ को एक्सप्रेस करने में एक ही लैंग्वेज आती है, वो है
1: बस
0: रोना,
1: रोना।
0: राइट। भूख लगी तो रोना है, नींद आई तो रोना है, अनईजी हो रहा है तो रोना है, कोई भी चीज़ हो, राइट। उसी टाइम पे मम्मी पापा स्लीप डिप्राइव्ड है ना, नींद नहीं हो रही है,
1: बराबर।
0: हॉर्मोनल क्रैशेस हैं, काम भी संभालना है, आजकल मदर्स भी वर्किंग हैं
1: हाँ
0: तो उनको
1: दोनों।
0: एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल बर्डन है, तो उनका फ्रस्ट्रेशन कई बार अगर बच्चा
1: बच्चे पर
0: रो,
1: निकल।
0: है ना, तो बच्चे पे निकल जाता है हमारा गुस्सा।
1: मैडम, इस बारे में हम बात
0: यस
1: करेंगे, एक फोन ले लेते हैं।
0: यस
1: हेलो।
2: हेलो
1: हाँ नमस्कार।
2: मैम, मैं नागपुर से बोल रही थी। मेरा क्वेश्चन था कि आपने, मैडम ने भी पेरेंटिंग का बोला है, अगर मदर वर्किंग है और फादर अर्निंग के हिसाब से जो गाली गलौज है कुछ है, तो इसमें कोरोना पेज के बच्चे पे असर होता है, उसको मोबाइल का एडिक्शन है,
0: यस
2: तो ये सब चीजों में माँ ने क्या कदम लेना चाहिए?
0: राइट। मैम, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल काफ़ी कॉमनली हो रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट थिंग जो मैं बोलने वाली थी, कि ये जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनका ब्रेन इतना न्यूरोप्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिक मतलब बहुत सारे कनेक्शंस एक ही समय पे बन रहे हैं, एक एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ कनेक्शंस बन रहे हैं। तो जो चीज़ वो एक्सपीरियंस करेंगे,

0: खाना पीना, आवाज़ें, लाइट्स, हर चीज़ उनके ब्रेन में वायरिंग होती जाएगी आगे जाके, आगे के लिए. सो उस समय अगर घर में माहौल ख़राब है, झगड़ा होता है,
1: हाँ
0: गाली गलौज होती है, या पापा को देख रहे हैं कि पापा तो फ़ोन में ध्यान दे रहे हैं, एडिक्टेड हैं, या मम्मी पे चिल्ला रहे हैं, तो वो चीज़ इतनी डीपली वायर होती है ब्रेन में कि या तो बच्चे बड़े होके उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं अपनी
1: या
0: अपनी
1: सहमे
0: वाइफ के
1: सहमे
0: साथ,
1: से रहते हैं।
0: यस, या इतने सहमे हो जाते हैं कि हर रिश्ते से दूर हो जाते हैं. एंड उसके अलावा ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ हो गई, बहुत गहरे गहरे इम्पैक्ट्स हो जाते हैं जो समझ में ही नहीं आते कि इस वजह से हुए. सो ऐसे टाइम पे मदर्स को थोड़ा स्ट्रांगली फुट डाउन करना पड़ेगा, या तो बच्चे को उस माहौल से हटाना पड़ेगा अगर मदर वर्किंग है, और कोई और रिश्तेदार है आजू बाजू जिन पे आप भरोसा करके बच्चे को छोड़ सकते हैं तो वो कीजिए, या अगर आपके पास ये ऑप्शन है साथ लेके जाने का तो वो कीजिए, या डे केयर के लिए आप अफोर्ड कर सकते हैं, या उतने समय के लिए किसी को पे करके आप वहाँ पे बच्चे को छोड़ सकते हैं. अगर ये सब तब होगा जब आप आपके पति को समझा चुके हैं और वो नहीं समझ रहे हैं, या आजकल दादी दादा भी है ना, कई बार हो जाता है कि मम्मी ये बता रही कि इस तरीके से बिहेव करना है, या मीठा नहीं देना है, या ये नहीं खिलाना है, और दादी फिर छुपके से पीछे से दादाजी कि अरे पापा को नहीं बताना, मैं तो दिला दूंगा तुमको. तो अगर ऐसी टाइप की पेरेंटिंग होती है तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, माँ बाप की रिस्पेक्ट रहती नहीं है उस टाइम पर,
1: बराबर है।
0: दादी दादा की हो जाती है. तो हमें वो चीज़ थोड़ा समझ के, अगर ऐसा है तो मदर्स को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता
1: बना
0: है.
1: यानी कोण म्हणजे जर घरामध्ये दोन्ही असतील पेरेंट्स म्हणजे
0: यस
1: तर दोघांनी सहमतीने व्यवस्थित
0: यस
1: अंडरस्टँडिंग ठेवून
0: मिलजुल के आपको
1: हाँ
0: साथ रहना है तो मिलजुल के एक डिसीजन रखना पड़ेगा कि हमको इस
1: हाँ
0: तरीके से परवरिश करनी है.
1: बराबर।
0: आप ये नहीं कर सकते कि चार अलग लोग हैं और चार अलग तरह से परवरिश कर रहे हैं.
1: ये तो होता ही है मैडम। हम बात कर रहे थे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग करते वक्त उनको सेफ्टी के बारे में।
0: यस, तो उस समय मदर्स का, फादर्स का, जब बच्चे रो रहे हैं और आप खुद गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, मैं समझती हूँ कि इट्स अ ट्रबल, क्योंकि मैं खुद न्यू मॉम हूँ और मुझे पता है कि उस समय कितना डिफिकल्ट होता है
1: डिफिकल्ट
0: खुद
1: होता है।
0: की इमोशन हैंडल करना कि बच्चे पे ना निकले, बट आपको उस समय खुद को हैंडल करना सीखना है जिससे कि आपका वो गुस्सा, आपकी वो चिड़चिड़ बच्चे पे ना निकले. कई बार ऐसा भी होता है कि हमको एडवाइस दी जाती है कि अरे बच्चा हर तो रोते ही रहते हैं, हर बार उसको पास मत लो, उसको आदत लग जाएगी. वर्किंग मदर्स को स्पेशली बोला जाता है कि तुम थोड़ा उसको दूर रखना शुरू करो जिससे कि वो तुम्हारे बिना रह ले,
1: ऐसे बोला ही जाता है क्योंकि वो बच्चे को आदत ना हो जाए।
0: आदत ना हो जाए. पर बच्चे को उस समय सबसे ज्यादा यही करीबी इसकी जरूरत है.
1: एक फोन है।
0: यस
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ आपलं नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा।
2: हाँ, माझं नाव आहे ब्रिगेडियर सुनील गावपांडे।
1: हाँ जी
2: मी मिलिटरी ऑफिसर आहे, इथून नागपूरहूनच बोलतोय, प्रतापनगर।
0: जी
2: अच्छा, मेरा एक दो पॉइंट आहे, हाँ दो भाग में। एक तो आपका जो
1: तुमच्या
2: मैंने
1: रेडिओ
2: रेग्युलरली
1: सेटचा
2: तुमचा
1: आवाज
2: ऑप्शन दिला
1: कमी
2: की
1: करा आणि मग प्रश्न विचारा।
2: हाँ आता ठीक है। हेलो।
1: हाँ
2: यस
1: प्रश्न विचारा आता आपला।
2: नाही, माझं काय एक तर आहे ना, याच्यामध्ये जे इतके शब्द वापरतात ते कम्प्लिटली इंग्लिश शब्द वापरतात, काही काही खालच्या लोकांना कळणार नाही। तर एक त्यांना म्हणा की थोडंसं व्हॅलिडेशन, ऑटोनॉमी अँड ऑल दॅट थिंग, दे आर गुड फॉर मी, पण
1: नक्कीच
2: थोडंसं केलं तर बरं राहील। आणि दुसरा मुख्य प्रश्न माझा असा आहे मॅडमला की पालकत्व आणि पेरेंटिंग जे याच्यामध्ये आहे ना, तर त्याच्यामध्ये याच्यावरती जसा क्वालिटी टाइम असतो आपला, जो क्वालिटी टाइम मी पण देतो
0: यस
2: लहान मुलांना, 40 वर्षापासून सांभाळतोय मी बॉर्डरवर
0: यस
2: आतंकवाद्यांच्या मुलांना, याच्या त्याच्यामध्ये सैन्य दलात असल्यामुळे आपल्याला एक क्वालिटी टाइम दिला, तर त्याच्यातून आहे ना क्वालिटी टाइम म्हणजे जो महत्वाचा वेळ आहे आपला, किंवा त्या मुलांचा जो महत्वाचा वेळ आहे त्यावेळेस उपलब्धता असलेली बरं आहे। थोडंसं मराठी किंवा हिंदी शब्द वापरले तर माझ्या जो दोन पेरेंट्स असले त्यांनाही कळेल, कारण ते विचारांना कळणार नाही। तर क्वालिटी टाइम जो आहे किंवा उपलब्धता आहे चांगल्या वेळेची, की आई वडिलांनी मुलांना देण्याची कृपा करावी, किती त्यांचं बिझी शेड्यूल असलं तर पेरेंटिंग चांगलं होईल, याच्यावर थोडं मॅडमला बोलायला सांगा।
0: थँक्स फीडबॅकसाठी तुमच्या, पण मी प्रत्येक इंग्लिश शब्दाला एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे, कनेक्शनला जुडाव, ऑटोनॉमीला स्वराज्य, मी सगळं व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. काही काही शब्द सायंटिफिक आहेत, त्यांचं एक्झॅक्ट ट्रान्सलेशन नाही होणार, जसं की न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ क्या है. जो आपने बोला क्वालिटी टाइम, एक्झॅक्टली तेच आहे जे मी कनेक्शन बोलत होती, की आई वडील सोबत तर बसले पण वडील लॅपटॉपवर काम करते, आई फोनमध्ये लागलेली आहे, तर ते क्वालिटी टाइम नाहीच झालं.

0: बाळासोबत त्या प्रकारे वेळ स्पेंड करणं खूप गरजेचं आहे. प्रेझेन्स, 10 मिनिट्स तुम्ही दिले पण पूर्ण अटेन्शन तुमचं बाळावर आहे, ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे रादर देन दिवसभर तुम्ही त्यांच्यासोबत काढलं बट वन ऑन वन आय कॉन्टॅक्ट करून कनेक्शन खूप कमी केलं ते नाही. यापुढे जर का आपण बोललो तर वी कम टू द नेक्स्ट एज ग्रुप, 3 वर्ष ते 6 वर्ष म्हणजे बिटवीन द टॉडलर्स, याला आपण टॉडलर्स एज ग्रुप म्हणतो. 6 वर्षांपर्यंत ना आपण त्यांचं आता ऑटोनॉमी बनतो आहे, स्वराज्य बनतो आहे. तर या एज ग्रुपमध्ये बेबीज मेनली काय करतात, तुम्ही जे म्हटलं त्याचं उलटं, आपने जो बोला वो नहीं सुनेंगे, ये नहीं खाना है, अच्छा यही खाना है, ये गर्म है इसको हाथ मत लगा, उसी को पकड़ेंगे, उसी को हाथ लगाएंगे. तो आपको ये लगता है कि बच्चा तो एकदम यू नो मेरे तो रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहा है, जिद्दी हो रहा है, बैक आंसर कर रहा है, या यू नो बहुत ही बदमाशी करता है. गुड बिहेवियर्स इंडियन पेरेंटिंग में क्या है, हमारी एक गलती है कि हम ओबीडियंस म्हणजे मेरा कहना सुन लो तो ज्यादा अच्छा बच्चा है. लेकिन अगर उस बच्चे ने
1: आपसे
0: हटके थोड़ा सा अलग कुछ किया तो ये बच्चा तो ओवर स्मार्ट है या यू नो मुजोर, वो हमारी एक गलती है. उस समय जो हमारे टॉडलर्स हैं उनको ये जरूरत है कि उनका फ्रंटल लोब जो है ब्रेन का जो सबसे सामने का हिस्सा है जो हमें कंट्रोल करना सिखाता है, संयम सिखाता है, विवेक देता है, वो डेवलप ही नहीं हुआ है.
1: बराबर है.
0: तो उस समय वो इम्पल्सिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जो मन में आया वो कर देंगे, जैसा आया वैसा सोच पहले करेंगे फिर सोचेंगे. राइट. तो
1: मैडम म्हणजे नक्कीच मुलांनी कसं वागायला हवं याच्यासाठी आपणच जबाबदार आहोत. एक फोन घेऊया. हॅलो.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ. मैम मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है ये कि क्या आपको नहीं लगता मैम कि अपने इंडिया में भी मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया का एक बैन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ब्लैंकेट मतलब कवर होनी चाहिए.
0: यस.
2: क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें मैम जो उनको नहीं पता लगनी चाहिए उनको टाइम से पहले मालूम चलने लग गई है.
0: बिल्कुल.
2: और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी जो आर्ट होती क्यूरियोसिटी ये कहीं ना कहीं किल हो रही है और उनमें एग्रेशन वॉयलेंस की तरफ वो कहीं ना कहीं हम लोग उनको मतलब इनडायरेक्टली मतलब प्रमोशन हो ही रही है कहीं ना कहीं. तो आपका क्या मानना है जैसे बच्चों को मतलब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना ना सिखाना पेरेंट्स का, ये भी तो सबसे बड़ा एक रीजन है घरों में अगर आप देखते ही होंगे अपने आसपास.
0: बहुत बेहतरीन चीज़ बोले सर आप, बहुत बेहतरीन चीज़ बोले कि जैसा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है और उसकी वजह से कम एज में जो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं बच्चों को और वो हैंडल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने सिखाया नहीं है भावनाओं को कैसे हैंडल करना. पेरेंट्स ने ओपनली अपनी स्पेस रखी नहीं है कि बच्चों तुम मुझे बेझिझक निडर होके सवाल कर सकते हो कि ये आपको इंटरनेट पे दिखा ये क्या है. है ना. एंड इस चक्कर में ही मेंटल हेल्थ हमारे यूथ का इतना गिर रहा है और इतने सुसाइड अटेम्प्ट्स सुसाइड केसेस इतने बढ़ रहे हैं बिकॉज मैं मेरी बड़ी भावनाएं कैसे हैंडल करूं मुझे नहीं पता. मम्मी पापा ने जिस तरीके से किया वो था चिल्ला के या गुस्सा करके या झगड़ा करके, मुझे वो नहीं सीखना था तो मैंने वो नहीं सीखा. मैंने अंदर दबा दिया.
1: अच्छा.
0: पर अंदर दबाते दबाते मुझे समझा ही नहीं उसे मैं रिलीज कैसे करूं और अचानक प्रेशर कुकर का सीटी फटता है और सब कुछ फैल गया. यहाँ पे ये इसी वजह से ये जो मैं एज ग्रुप्स की बात कर रही हूँ हर एज ग्रुप में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. जैसे 0 to 3 में सेफ्टी आपने कनेक्शन बैठाना है एंड 3 to 6 में जो मैं अभी कह रही थी कि जब टॉडलर मेल्ट डाउन करता है टैंट्रम थ्रो करते हैं रस्ते पे लोटपोट कर देंगे मुझे यही लेके दो मुझे यही चाहिए या मेहमानों के सामने ज़्यादा होता है वो बिहेवियर. राइट. तो उस समय आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने थप्पड़ लगा दिया या आपने चिल्ला दिया नहीं या आपने दे दिया जो उनको चाहिए था. ये तीनों चीजें अगर आपने की तो आप उनके वो बर्ताव को गलत दिशा में भेज रहे हैं. उस समय आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको एक बहुत बड़ी भावना आ रही है जो वो समझ नहीं पा रहा है कैसे संभालो. उस समय ईर्ष्या जो जेलेसी है कि उस बच्चे के पास तो ये है मेरे पास नहीं है तो जिद करेगा, कुछ चाहिए जिद करेगा. या वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे किस तरीके का खाना खाना है एंड तब मेल्ट डाउन आए, ऐसे भी चीजों पर होता है. तो उस समय आपको उसको पहले कनेक्शन देना है, पहले प्यार देना है. बच्चा अगर चिड़चिड़ कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है या लोटपोट कर रहा है, आप उसके लेवल पर जाइए, उसके पास बैठिए, वो जमीन पे बैठिए, उसको गले लगाइए.

0: या उसके पास बस बैठिए, जितने देर तक वो चिड़चिड़ करता
1: चिड़चिड़
0: है
1: करता
0: करने
1: है।
0: दीजिए, वो भावना रिलीज करने दीजिए। आप इतने बड़े होने के बाद अपना गुस्सा हैंडल कर पाते हैं क्या?
1: नहीं कर
0: वो
1: पाते
0: बच्चा कैसे करेगा?
1: बराबर।
0: वो आपको देख के सीखेगा। तो उस समय अगर आप शांत हैं, वो आपको कॉपी करेगा धीरे धीरे, आगे जाके यही होगा। एंड पहले कनेक्शन फिर करेक्शन, ऐसा हम बोलते हैं।
1: अच्छा
0: तो पहले उनसे आप कनेक्शन बैठाइए, रिश्ता बनाइए, उनको अपनी शांतता दीजिए, उनके गुस्से में आप मत जाइए।
1: हाँ, यानी गुस्से पे गुस्सा और ज्यादा
0: यस
1: हो जाता है।
0: यस, उन उनको आपकी शांतता बोरो करने दीजिए, फिर आप उनको बाद में जब वो शांत हो जाए फिर सिखाइए या पूछिए कि क्या हुआ था, या ये सिखाइए कि बेटा आपने आंटी के सामने ऐसे बिहेव किया, ये गलत था।
1: गलत।
0: पर आप गुस्से में ही सिखा दोगे तो नहीं सीखने वाले।
1: हाँ,
0: राइट
1: उनको लगता है कि अटेंशन नहीं दे रहे हम, ऐसा है।
0: राइट
1: मैडम एक फोन लेते हैं।
0: यस
1: हेलो।

0: ऐसा है
1: राइट
0: मैडम। एक फोन लेते हैं।
1: यस
0: हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ
2: हाँ मैम, माझा प्रश्न असा आहे की माझा मुलगा 4 वर्षाचा आहे आणि तो कसं जसं कुठल्याही गोष्टीची डिमांड करतो की मला हे
1: यस
2: घेऊन देशील ते घेऊन
1: यस
2: देशील,
1: यस
2: आम्ही कसं जनरली घेऊन देतो पण इन केस जरा मला ती गोष्ट नाही घेऊन द्यायची आहे
1: हो
2: तर ते प्रश्न कसे टॅकल करायचे।
1: करेक्ट, व्हेरी
2: आणि हा
1: इम्पॉर्टंट।
2: हा पहिला। आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की माझ्या जाऊचा मुलगा, हे दोघं पण सेम एजचे आहे, जॉईंट फॅमिली आहे आमची, तर आमच्याकडे प्रत्येक गोष्ट दोन येतात,
1: हा
2: खेळण्यापासून पुस्तकांपासून सगळ्या गोष्टी दोन येतात, तर हे बरोबर आहे की नाही?
1: वाव, बहुत अच्छा, खूप डीप क्वेश्चन आहे आणि जितक्या कमी टाईममध्ये मी तुम्हाला
0: सांगता येईल
1: याचं
0: ते त्याचा।
1: सोल्युशन, हां आय विल ट्राय माय बेस्ट। सगळ्यात आधी हे की दर गोष्ट घेऊन नाही द्यायची। आपको अभी आपके बच्चे को ना ये चीज़ सिखानी है, हम इसको बोलते हैं इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रैटिफिकेशन। ग्रैटिफिकेशन मतलब संतुष्टि, रिलैक्स हो गया, अच्छा लगा। उदाहरण के लिए आपको अगर सुबह चाय कॉफ़ी की आदत है, आपने नहीं भी आपको चिड़चिड़ होगी, और आपने तुरंत उठते से ही चाय बनाया, आपको संतुष्टि मिली, दैट इज़ इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन। आपको जिम जाना है पर आपको सुबह उठने में कंटाल आ रहा है, पर आपको पता है कि अगर मैं कंसिस्टेंटली जिम जाऊंगी तो मेरी बॉडी जो फिजिकल फिटनेस और हेल्थ में रहेगी, मुझे वो चाहिए। वो लॉन्ग टर्म हो गया, वो हो गया डिलेड खुशी,
0: डिलेड। अच्छा,
1: कि अभी मैं तकलीफ में रहूं जिससे आगे जाके मुझे खुशी
0: खुशी
1: मिले
0: मिले।
1: मेहनत करके। वो चीज़ आपको बच्चों को सिखाना है। मोबाइल फोन्स और टेक्नोलॉजी, जो सर ने पहले का क्वेश्चन पूछा, वो यही गड़बड़ कर रहा है कि पेशेंस ख़त्म कर दे रहा है। हाँ, एक फिंगर टिप पे तो सब कुछ
0: सब
1: है,
0: मिल रहा है।
1: करेक्ट। आजकल हम ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन सब ऑनलाइन कर लेते हैं, तो हमको ही हमारा ही पेशेंस ख़त्म होने लग गया है। तो बच्चों को अगर हर चीज़ तुरंत यूट्यूब पे क्लिक करते से दिख जाएगी तो उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आएगा, जो डोपामीन है, जिसकी वजह से
0: बराबर।
1: एडिक्शन होता है, राइट। तो अगर आप तुरंत आपके बच्चे को हर चीज़ दिला दोगे, भले उसमें कोई गलत नहीं है जो उसने मांगा है, आप दिला सकते हो, बट आपको यहाँ पे काम है कि आप उसको सिखाओ। लेसन्स आप ही दोगे, है ना। तो यहाँ सिखाना कि बेटा एक काम करते हैं, अपन आज नहीं लेंगे, हम कल
0: कर
1: लेंगे,
0: लेंगे। हाँ
1: बस इतनी सी चीज़ करनी है। और ये थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा, तुरंत नहीं होगा, बट करिए। आसान है जो चीज़ दिला सकते हो उसमें भी करो, तब जाके आगे जो चीज़ सही में नहीं दिलानी चाहिए
0: वो
1: वहाँ
0: उसके
1: पे
0: लिए
1: उसको
0: रुकना।
1: संयम,
0: हाँ
1: हाँ
0: संयम।
1: संयम सिखाना ये आपका काम है।
0: हाँ मैडम, ये
1: दूसरा,
0: संयम सिखाएंगे, लेकिन एक फोन ले लेते हैं।
1: यस
0: हेलो।
3: हेलो, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।
3: हाँ, लीलाधर चोपडे बोलतो आहे कारंजा घाडगेवरून।
0: हाँ बोला।
3: मॅडम, माझा प्रश्न असा आहे की माझा नातू आता जवळपास 3 वर्षाचा आहे, आणि काय झालंय, 14 महिन्याचा होता तेव्हा त्याला इथे दूध तोडायसाठी आमच्याकडे आणलं, आणि त्याच्यानंतर मग तो इथे रुडला, तर आज त्याचे आई वडील त्याला नेण्याचाही प्रयत्न करतात, म्हणजे त्याला खूप काही करतात, पण तो आमचं घर सोडायलाही तयार नाही आणि आई वडिलाकडे जायलाही तयार नाही, म्हणतो की जे काही करत ते इथेच। आणि पुन्हा दुसरा एक माझा प्रश्न असा आहे की या प्रकारचे जे मुलं असतात, म्हणजे यांना नेमकं काय म्हणावं आपण?
1: हो हा ना, खूप दुविधा वाला क्वेश्चन है ऍक्च्युली। पहली चीज तो ना, जो मम्मी पापा ने किया, एक्सट्रीम स्टेप हो गया कि दूध छोड़ने के लिए सीधे दादी दादा के पास ले गए, या क्योंकि उस एज में माँ बाप के करीबी बहुत ज़रूरी, मैंने बोला ना कनेक्शन चाहिए, उस एज में जो प्राइमरी रहेगा उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो
0: बराबर है।
1: अब वो कनेक्शन कैसे तोड़ेंगे, आप नहीं तोड़ सकते। अब अगर मम्मी पापा ने फिर से एक्सट्रीम स्टेप लेके, ज़बरदस्ती लेके
0: दबाना
1: चले गए, तो फिर वो कनेक्शन का भी
0: हमेशा
1: इम्पैक्ट
0: के
1: हो
0: लिए टूट
1: जाएगा
0: जाएगा।
1: ब्रेन पे, और मम्मी पापा से भी दूरी हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे करना पड़ेगा। पहले एक दिन घुमाने लेके गए, फिर 2 दिन घुमाने लेके गए, फिर कहीं और रहने गए, फिर दादी दादा के साथ ट्रिप निकाली कि साथ में जाएंगे, उस समय मम्मी पापा के साथ रूम में शेयर किया और दादी दादा को
0: हाँ
1: दूसरा रूम, थिंग्स लाइक दैट। धीरे
0: ऐसे।
1: धीरे, अगेन ये बहुत डिटेल में, हमारे पास आई डोंट थिंक उतना टाइम है।
0: हाँ श्रोतेहो, आपण ऐकत आहात माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर। हॅलो डॉक्टर, हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम। आजचा विषय आहे विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व, आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत डॉक्टर कनक गिल्लूरकर। या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067256010 आणि 2529266, STD कोड 0712। मॅडम, एक फोन आहे।
1: यस यस
0: हॅलो।
4: हेलो. हाँ मैम, पेरेंटिंग करते करते कभी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगता है.
1: हेलो जी, करेक्ट करेक्ट.
4: कभी हाँ, और क्या है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से कॉर्टिस

0: सॉल का क्या रोल है, कभी कभी हिस्टामाइन का अंग में इतना खुजली होता है तो एंटी हिस्टामाइन लेना पड़ता है, हार्ट पे प्रेशर आ जाता है, तो ये सब अपने को सेटिस्फाइड लेवल पे लाने के लिए, और एक एम्बिशियस रहते हैं अपन की एज में क्यों ऐसा हो रहा है अपने साथ, तो ये सब अपन कैसे सेटल कर सकते हैं अपने ही प्रॉब्लम को। नेचर तो अपन एक्चुअली चेंज नहीं कर सकते, अपना जो नेचर रहता है एम्बिशियस नेचर, ये भी बहुत डेंजरस है मुझे इस वक्त लग रहा है।
1: हाँ,
0: ये करूँ मैं वो करूँ, और उसकी वजह से संतुष्टि कहीं ले नहीं पाते, वो मुझे थोड़ा
1: 100% ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ. पहली चीज़ तो आपको जो बॉडी इश्यूज़ है जैसे एलर्जी इशू एंड ऑल ऑफ दैट, मेरा पहला सजेशन है कि एक फिजिशियन को ज़रूर दिखाइए आप, या यू नो, क्योंकि पोस्टमार्टम बॉडी बहुत चेंज हो जाता है, सारी ही केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो ज़रूरी है कि यू गेट दैट टेस्टेड. दूसरा, एम्बिशियस होना बिल्कुल भी गलत नहीं है मैम. ये तो है कि वी कांट हैव इट ऑल, अपने को दोनों नाव में हम पैर डाल के चलना थोड़ा मुश्किल है. पर मॉडर्न औरतों के लिए और भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा ना, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम भी करना है, फाइनेंशियल बर्डन भी संभालना है, बच्चे की अच्छी परवरिश हो वो भी देखना है. सो उस चक्कर में आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है. ये मेरी पर्सनल एडवाइस है हर वर्किंग मॉम के लिए, इनफैक्ट हर मॉम के लिए, आपका एक सपोर्ट सिस्टम, भले वो दादी हो, वो नानी हो, वो मासी हो, वो बुआ हो, वो आपके हस्बैंड हो, एनी बड़ी, बट दो तीन ऐसे लोग जो आपके साथ चल के आपने जैसा बताया वैसी परवरिश करने में आपकी मदद करे. ऐसा नहीं कि आपको पता है कि मेरी पीठ पीछे ये वो फॉलो नहीं करेंगे, है ना. सो एक ऐसा ट्रस्टवर्दी सर्कल आपका होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होके काम पे ध्यान दे सकते हैं. बट मॉम गिल्ट नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. अब मातृत्व का वो पार्ट एंड पार्सल है.
2: क्योंकि क्या, घर भी संभालना पड़ता है और जॉब भी करना पड़ता है, तो उसमें ये तो होना ही है.
1: मैं आखिर में दो चीज़ें ये ज़रूर बोलूँगी कि जीरो टू जो 6 to 12 के बच्चे हैं उनको खेलने से ना रोकिए. हम उस समय एक गलती ये करते हैं कि हम एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, मार्क्स, एग्ज़ाम, इन चीज़ों पर प्ले, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये चीज़ें ब्रेन इतना बेहतरीन बिल्ड करता है जो एकेडमिक्स नहीं करेगा. और दूसरा, टीनेजर्स ना ऑलरेडी बहुत सारी दुविधा में चल रहे हैं. एक तो उनका ब्रेन पूरे हॉर्मोन्स में फ्राइड है, दूसरा एकेडमिक प्रेशर है, खुद की आइडेंटिटी बनानी है, करियर, इमोशनल कन्फ्यूजन, पीयर प्रेशर, फिर जैसे ये टेक्नोलॉजी है उसका बहुत सारा इम्पैक्ट. उस वजह से आप उनको लेक्चर्स ना दें. आपका अगर टीनेज कोई चाइल्ड है, उनको एक सेफ अडल्ट चाहिए जो नॉन जजमेंटल स्पेस रखे और उनके दिमाग में जो भी सवाल है वो आके बताए. अगर एडिक्शन की कोई क्वेश्चन है तो आके बताए, अगर सेक्सुअल रिलेटेड क्वेश्चन है तो आके बताए, बट आप वहाँ पे लेक्चर देंगे तो वो आपसे दूर होते जाएंगे. आपको वहाँ उनका दोस्त बनना पड़ेगा. सो ये चार एज ग्रुप्स के हिसाब से चार बेसिक चीज़ें हैं, वरना तो इतना लंबा टॉपिक खत्म नहीं होगा.
2: बरोबर आहे. म्हणजे पालकत्व हा तसा खूप मोठा विषय आहे, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला मुलांचं मित्र आणि आई वडील असं दोन्ही बनून आपण त्यांना सांभाळायचं आहे.
1: करेक्ट.
2: तरच आपण एक म्हणजे योग्य पिढी आपण नक्कीच तयार करू शकू.
1: बॅलन्स
2: त्याचं राखणं खूप गरजेचं आहे. आणि तुम्ही आतापर्यंत सांगितल्याप्रमाणे म्हणजे लहान मुलांशी कसं वागावं, तर त्यांना वेळ द्यायला हवा, त्यांच्या नजरेत नजर मिळून मी तुझ्यासोबत आहे हा एवढा दिलासा सुद्धा नक्कीच सपोर्टिव्ह असू शकतो. कारण आजकाल जे आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलेलं आहे, तर त्यासाठी मी तुझ्या पाठीशी आहे एवढं जरी म्हटलं तरी मुलांना नक्कीच कळतं की नाही, मी याच्यातनं बाहेर निघायला पाहिजे कारण माझे आई वडील आहेत.
1: अगदी बरोबर.
2: तर मॅडम, अजून जाता जाता काही टिप्स आमच्या या टीनेजर्ससाठी आहेत का?
1: हो, टीनेजर्ससाठी सगळ्यात महत्वाची टिप हे, इफ द टीनेजर्स आर लिसनिंग टू मी, आप खुद की आयडेंटिटी अगर बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने रूट्स ना भूलें. आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स कौन हैं, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपके मॉरल्स क्या है. इस उम्र में बहुत कॉमन है कि दोस्तों के बहकावे में आके चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना, बट जो चीज़ आपके मन में सही नहीं बैठती उस चीज़ को किसी भी प्रेशर में आके फॉलो नहीं करना.
2: ठीक आहे मॅडम. आज पालकत्व खूप मोठा विषय असला तरी आपण खूप छान समजवला, त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत. तर श्रोते हो, हा होता माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम. आजचा विषय होता विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व. तज्ज्ञ होत्या डॉक्टर कनक गिल्लूरकर. आजच्या कार्यक्रमाला तांत्रिक सहाय्य लाभलं नंदकिशोर पोकळे आणि सतीश कोडमलवार यांचं. निर्मिती सहाय्यक होते अतुल साखरकर आणि सादरकर्त्या संगीता अरजपुरे. तेव्हा मी भावना लोखंडे डॉ कनक गिल्लूरकर यांच्यासह आपला निरोप घेते पुन्हा भेटण्यासाठी. तोपर्यंत नमस्कार.

0: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. मध्यम लहरी 512.8 meters म्हणजेच 585 kHz. 10 वाजले आहेत. प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर. आजचा विषय आहे मुख कर्करोग. तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर संजोग सिंह. सादरकर्त्या संगीता आरसपुरे.
1: श्रोते हो नमस्कार. समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटल लक्ष्मीनगर नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमात मी वैदेही चौरे आपणा सर्वांचं स्वागत करते. श्रोते हो, आज आपण मुख कर्करोग कारणे आणि उपचार याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर संजोग सिंह. नमस्कार डॉक्टर.
2: नमस्कार
1: डॉक्टर. सबसे पहले तो ओरल कैंसर जब कहते हैं हम, तो कैंसर ये वर्ड उसमें आता है, तो कैंसर के बारे में हम जानना चाहेंगे क्या होता है कैंसर.
2: कैंसर किसी प्रकार की जन्मजात विकृति या किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है. कैंसर एक प्रकार का ऐसा समझिए कि जो अगर हम कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है तो वो जो प्रोग्राम बनाता है उसके कंट्रोल में होता है. जैसे आजकल AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो शरीर में हो जाता है और ये खुद ही कंट्रोल करने लगता है. तो ये शरीर के कंट्रोल के बाहर चला जाता है. हमारे सेल ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि वो अपने टाइम पे जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर खुद ही खत्म हो जाते हैं. लेकिन कैंसर के सेल्स ऐसे नहीं होते. कैंसर के सेल अपने बढ़ते जाएंगे, आपको शरीर के कंट्रोल के बाहर रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी नंबर जो होता है उनका 1 से 4, 4 से सीधा 16, इस तरह से बढ़ता है. जो शरीर का जो नॉर्मल सेल होता है वो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और वो कंट्रोल में नहीं होता. प्लस उसका जो साइज होता है वो भी शरीर के कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए वो नॉर्मल जो अगर आपके किसी अंग में कैंसर होता है तो वो दिखने लग जाता है बाहर निकल के बड़ा. और मुंह के कैंसर में खासकर कोई स्किन आपकी फट जाएगी, छाला या जख्म जिसको बोलते हैं, फोड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, तो वो फोड़े जैसा दिखने लगता है क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वो एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. या गठान या मास हो गया है मुंह के अंदर, तो वो भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. तो ये एक प्रकार से जो होता है हमारे जो बॉडी का कंट्रोल होता है सेल्स पे वो चला जाता है, तब कैंसर हो जाता है. उसके कारण बहुत से हो सकते हैं लेकिन बेसिकली होता यही है कि सेल का कंट्रोल जो है वो चला गया है बॉडी का.
1: डॉक्टर, जब ओरल कैंसर की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे होता है बॉडी में?
2: तो हमारी जो ओरल कैविटी है वो जो हमारे होंठों से शुरू होती है और जो जबान के पीछे का हिस्सा है वहां तक ये जाती है, और उसके पीछे के जो हिस्सा है उसको पड़जीभ, तो वो ओरोफेरिंक्स कहा जाता है. ओरल कैंसर सिर्फ जो होंठ से शुरू होके जीभ के पीछे के हिस्से तक, उसके बीच में जितनी चीजें हैं, उसके बीच में गाल आ गया, हिरडे आ गए आपके, जो हड्डी होती है, जबड़ा होता है वो आ गए, फिर जबान आ गया, जबान के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसको फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं. फ्लोर ऑफ द माउथ यानी जो फर्श जिसपे जबान बैठी होती है वो, और टालू हमारा जो होता है ऊपर का वो, और जो सबसे पीछे का यूवला पट जीप, जो जीप के पीछे का हिस्सा होता है, ये सब मिला के हमारा जो रीजन होता है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं, और इसमें जो कैंसर होता है वो ओरल कैंसर माना जाता है.
1: डॉक्टर, मोस्टली कौन से एरिया में ज्यादा कैंसर दिखाई देता है?
2: ओरल कैंसर में इंडिया में ज्यादातर जबान में पाया जा रहा है. अब पहले ये गालों में पाया जाता था लेकिन अब ये थोड़ा जबान में पाया जा रहा है. ये शिफ्ट इसीलिए भी ज्यादा हो रहा है, खासकर हमारे एरिया में, नागपुर और नागपुर के अराउंड, सेंट्रल इंडिया जिसे कहा जाता है, खर्रा खाने के कारण. क्योंकि खर्रा जब हम खाते हैं तो हमारा मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाता है और जीभ में वो ज्यादा अफेक्ट करता है और यंग पेशेंट्स को ज्यादा अफेक्ट करता है. तो ये अब शिफ्ट देखा जा रहा है और इसका रिजल्ट भी बाकी कैंसर से बहुत पुअर माना जाता है, जो जबान का कैंसर.

0: कैंसर होता है वो गाल के कैंसर से या तालू के कैंसर से ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक ऐसे कि वो पलट के आने की संभावना, यानी अगर इसका स्टेज वन का ट्रीटमेंट मैंने किया जीभ के कैंसर का और गाल के कैंसर के स्टेज वन का किया, तो जीभ के कैंसर में वो पलट के आने की संभावना उससे बहुत ज्यादा है। तो ये ज्यादा खतरनाक जीभ में जब होता है तो माना जाता है गाल
1: हाँ
0: से या किसी और एरिया से।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक रीजन तो बता दिया कि खर्रा खाने की वजह से सेंट्रल इंडिया में यह ज्यादा दिखाई दे रहा है।
0: जी,
1: इसके अलावा इसके और कारण क्या होते हैं?
0: इसमें सबसे पहले तो तंबाकू का किसी भी प्रकार से आप सेवन कर रहे हैं, सबसे कॉमनली तंबाकू खैनी जो बोलते हैं हम, तंबाकू ऐसे ही खाना
1: हाँ
0: चूने के साथ जो लेते हैं,
1: हाँ हाँ
0: फिर सेंट्रल इंडिया में जो हमारे एरिया में खर्रा बहुत बड़ा कारण है, सबसे ज्यादा बड़ा कारण है, पान में आप तंबाकू मिला के खा रहे हैं। मैं अलग से ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि तंबाकू सिर्फ खाने से हो सकता है, अगर हम इसको पान में खा रहे हैं, अगर हम पान मसाले में मिला के खा रहे हैं तो नहीं होगा हमें। आप किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन करें, किसी भी, यानी नस तक अगर आप अपना मंजन कर रहे हैं उससे, जो औरतें खासकर बहुत करती हैं गाँव में, नस से मंजन करती हैं, वो तंबाकू वैसे सेवन नहीं करती, लेकिन तो भी तो तंबाकू आपके शरीर में जा ही रहा है, तो उससे भी कैंसर हो सकता है, इसलिए बहुत खतरनाक है। तंबाकू आपके शरीर में किसी भी प्रकार से जाए वो कैंसर का उससे बन सकता है कारण होने का, आपको अगर मुंह में ना होगा तो किसी और जगह पे होने का कारण हो सकता, पेट में भी हो सकता है, गले में भी हो सकता है, इसलिए आपको तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना है। दूसरा कारण जो औरतों में खासकर बहुत होता है जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया, वो होता है शार्प दांत या टीथ, शार्प टीथ। तो वो शार्प टीथ जो होता है वो, यानी तेज दांत, किसी किसी के दांत बहुत तेज होते हैं, वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, बहुत दांत आप घसते हैं, खासकर औरतों में, इसीलिए भी ये थोड़ा सा मतलब एक एनेक्डोट है, फनी एनेक्डोट इसलिए होता है कि बहुत सोचती हैं, बैठी रहेंगी 10 चीजें दिमाग में चलते रहती हैं, तो दांत पीसते रहती हैं, पता नहीं चलता है उनको, इसलिए आप देखेंगी बहुत सी लेडीज को जो मुंह का जॉइंट होता है, जबड़े का जॉइंट कान के आगे, बहुत औरतें कंप्लेन करती हैं मुझे यहाँ दर्द होता है, वो भी एक कारण होता है आपके दांत जब आप पीस रहे हैं, गुस्सा आता है, किसी भी कारण से आ सकता है, अगर वो सोच रहे हैं किसी भी कारण से, बहुत घर में प्रेशर है, टेंशन है किसी भी प्रकार का, या नॉर्मली ऑफिस में किसी भी प्रकार से आप बहुत सोच रहे हैं और आपको ध्यान नहीं है, तो आप दांत पीसते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपके पार्टनर को समझ में आता है कि आप दांत पीसते हैं क्योंकि उनको आवाज आती है। लोग ये भी बताते हैं कि पार्टनर सोए हुए हैं और साथ में आवाज आ रही है दांत घसने की, आप नींद में क्योंकि आप सोच रहे हैं दिमाग में, आपको पता नहीं, सबकॉन्शियसली आप सोच रहे हैं और दांत घस रहे हैं, तो ये इससे आपके दांत शार्प हो सकते हैं, और शार्प दांत से बार बार एक ही जगह पे अगर आपको ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा चोट लग रही है, जख्म बन रहा है, तो शरीर शुरू में तो 10 बार 20 बार 30 बार वो जख्म भर देगा, लेकिन अगर वो 50वीं बार हुआ, 100वीं बार हुआ, डिपेंड करता है, सबकी इम्यूनिटी अलग होती है, सबका शरीर की लड़ने की शक्ति अलग होती है, लेकिन कभी ना कभी वही जगह पे बार बार चोट लगने के कारण, जख्म बनने के कारण किसी एक दिन वहां पे कैंसर जरूर बन सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि तंबाकू से है, ये शार्प दांत से हो सकता है, और ये जब बन जाता है कभी तकलीफ वाला तो फिर वो ठीक नहीं होता, इसीलिए अगर आपके मुंह में ऐसा कोई कारण है तो आप उसको घसवाइए मत। ये सबसे बड़ा एक मिथ भी है, हम जो करते हैं हम दांत घसवा लेते हैं, दांत घसने से वो फिर से शार्प हो जाता है थोड़े दिन के बाद, तो आपको उस पर कैप बिठाना है डेंटिस्ट के पास जाके, जो एकदम राउंडेड हो, एकदम गोल हो, जो चबे ना, ना आपका जीभ चबे ना आपका गाल चबे, वो इस तरह का ट्रॉमा ही ना क्रिएट होने दे जिससे आपको चोट लगती है वहां, तो ये कारण आप निकाल सकते हैं ऐसे।
1: डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना
0: जी
1: चाहेंगे। श्रोते हो, आपण ऐकत आहात समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटल लक्ष्मीनगर नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम। आजचा आपला विषय आहे मुख कर्करोग, कारणे आणि उपचार, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर संजोग सिंग। डॉक्टर, फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम में।
0: जी
1: तो ये बहुत सारे रीजन्स हो
0: नहीं,
1: सकते
0: एक और
1: हैं।
0: बहुत बड़ा रीजन है जो अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि पहले जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे वो कौड़ी पहनते थे, डेंचर जिसे बोला जाता है, अब थोड़ा कम हो गया है वो पहनना, एडवांस प्रोस्थेसिस और जो ब्रिजेस बनने लग गए हैं मुंह के अंदर, पहले बहुत लोग पहनते थे, तो ये पहनने के कारण बहुत लोग, अब हमारी

0: भर्ती होने की एक आदत है, हम किसी भी चीज को काम चला लेते हैं। हम सोचते हैं कि तकलीफ हो भी रही है तो चला लेते हैं यार, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो जब डेंचर फिट नहीं हो रहा होता है और वो घस रहा है मुंह के अंदर, तो वो नहीं अच्छी बात है, घसना नहीं चाहिए। वो एकदम अच्छा फिट होना चाहिए, वो फिट हो जाए और आपको पता भी ना चले कि ये मुंह के अंदर कुछ है, ऐसा फिट होना चाहिए। बार बार घस रहा है तो वो जो है एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है जिससे डेंचर बनता है, और वो प्लास्टिक मटेरियल आपके शरीर पे यानी तालू पे या हृदय पे घस रहा है, तो उससे जो जख्म बनता है बार बार अगर बन रहा है तो वो उससे भी कैंसर हो सकता है, तो वो नहीं बनना चाहिए। अगर आपके डेंचर से आपके मुंह में घस रहा है और जख्म बन रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, उसको ठीक करवाइए। वेट नहीं करना है कि नहीं ठीक हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, नहीं। और वो जिस उम्र के लोग पहनते हैं उनको तो फिर और तकलीफ हो जाती है, इसीलिए ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके माँ बाप पहन रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग पहन रहे हैं, उनको पूछना है। बहुत बार वो नहीं बताते हैं, सोचते हैं कि हम क्या तकलीफ दें अपने बच्चों को, लेकिन उनको पूछना है आपको कि आपको इससे कोई तकलीफ हो रही है। अगर वो कहते हैं हाँ थोड़ा जख्म बन रहा है या तकलीफ होती है, दुखता है, गड़ता है, तो इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाके ठीक कराइए उसे।
1: डॉक्टर, कारण जानने के बाद ऐसे लगता है कि ओरल कैंसर के लक्षण क्या दिखाई देते हैं?
0: सबसे कॉमनली जो लक्षण होता है, जो सिंपल होता है, वो एक प्रकार का छाला है। जो नॉर्मल छाला जो होता है आपके मुंह में, एसिडिटी हो गई तो छाला हो गया, आपको ठीक से खाना नहीं हुआ तो आपको छाला हो गया, ये छाला 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। और ये दर्द वाला छाला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिए आप, कि जो तोन डाला वट्टे है बोलते हैं ना हम लोग, वो जो होता है वो बहुत दर्द देता है आपको, 4-5 दिन अति दर्द रहेगा आपको। लेकिन जो तकलीफ वाला ये कैंसर का छाला है ना, वो शुरू में दर्द कभी नहीं देता, वो जब बन जाता है ना वो उस समय दर्द नहीं देता, वो सिर्फ आपको दिखेगा कि हाँ मुझे एक छाला है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है उसकी, और वो 15 से 20 दिन के बाद भी ठीक नहीं होगा। वो वाला जो एप्थेस या जो एसिडिटी या कोई और कारण से चोट लग गई आपको, वो छाला 15 से 20 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, 1 महीने मैक्स टू मैक्स। लेकिन 1 महीने से ऊपर अगर कोई छाला है आपके मुंह में और आप तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको जरूर डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए उसमें। 1 महीना बहुत बड़ा समय होता है कोई भी दूसरे प्रकार के छाले को ठीक होने के लिए। 1 महीने में भी अगर वो ठीक नहीं हुआ है तो मतलब वो तकलीफ वाला हो सकता है, तो आपको उसको जाके दिखाना चाहिए। फिर मुंह के अंदर कोई गठान है, कोई मांस जैसा बन गया है, तो वो जरूर दिखाइए, ये भी एक चिन्ह है उसका। किसी प्रकार का सफेद या लाल दाग है, चट्टा, वो भी एक कारण हो सकता है बाद में, या चिन्ह हो सकता है, तो उसको भी दिखाना है आपको। कुछ और साइंस होती हैं जो मुंह के आसपास के जो एरिया है उसमें कहीं मांस आ सकता है, सडनली आपकी आवाज बदल गई, मेरा नाम संजोग सिंह है, ये मेरी नॉर्मल आवाज है, मेरा नाम संजोग सिंह है, ऐसी आवाज हो गई, हवा निकल रही है आपकी आवाज में से, तब ये एक साइन है कि आपके स्वरतंत्र में कुछ अटक रहा है। जो हमारा स्वरतंत्र ऐसे काम करता है, जब वो बंद हो जाता है और हवा की कंपन से आवाज निकलती है, जब वो बंद नहीं हो पा रहा है तब हवा पास हो जाती है उसमें से और हवादार आवाज आने लगती है, एरी आवाज। ये एक साइन है कि आपका स्वरतंत्र ठीक काम नहीं कर रहा है, आपको जरूर कुछ अंदर गले के हो सकता है मांस या छाला, तो आपको जाके दूरबीन से जांच करानी चाहिए। तो वो आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जनरल डॉक्टर के पास वो दूरबीन नहीं होती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जनरल डॉक्टर के पास जा, वहां पे 1 महीना वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो कुछ दवा दे देते हैं, फिर हम वेट करते रहते हैं, तब तक वो बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी आपकी आवाज में बदलाव है, ENT डॉक्टर के पास आपको जाना है, जो आपकी दूरबीन से जांच कर देंगे। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप निकल गए उसमें से, लेकिन अगर है तो फिर इमिडिएटली वो आपको निदान बताएंगे उसका। फिर आपको सांस लेने में, अगर आप देख रहे हैं आपको आवाज आ रही है कि मेरी एक ही नाक से हवा जा रही है, एक नाक से आपको फील ही नहीं हो रहा कि मेरी नाक हवा जा रही है, या आपको स्मेल नहीं आ रही, तो ये एक बुरा चिन्ह है। ये नाक के पीछे का जो हिस्सा है जो मुंह से जुड़ा हुआ है, वहां पे मांस हो सकता है, तो वो भी फिर आपको ENT डॉक्टर के पास जाके उसको दूरबीन से जांच करा लेनी चाहिए। ये सब ऐसी जगह हैं जहां सीधा आंखों से नहीं दिख पाएगा, तो आपको दूरबीन से जांच करना जरूरी है। तो आपको डॉक्टर को बोलना पड़ेगा मुझे एक बार दूरबीन से जांच करके आप दिखा दीजिए पीछे, ताकि आप भी निश्चिंत रहें, डॉक्टर भी निश्चिंत रहें। फिर इसके अलावा और ये हो सकता है कि सडनली आप गिटकने में आपको तकलीफ हो रही है, ठसका लग रहा है बार बार आपको, किसी किसी को बहुत ठसका लगता है आप देखेंगे, जनरली एसिडिटी या गैस के कारण होता है। लेकिन यही चीज अगर आप तंबाकू का या स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से

0: बीड़ी पी रहे हैं, उन लोगों में अगर बार बार ठसका लग रहा है पानी पीने में, खाना खाने में, तो जरूर दूरबीन से एक बार जांच करानी चाहिए। अच्छा चिन्ह नहीं है ठसका लगना बार बार, यानी हर बार आपको पानी पीना पड़ रहा है
1: हाँ
0: खाना गटकने के लिए, खाना आराम से नहीं जा रहा है नीचे, नहीं उतर रहा है, तो मतलब हो सकता है कि वहां पे कोई मास है जो रोक रहा है उसे, तो ये एक कारण हो सकता है, जरूर इसकी जांच करानी चाहिए। तो ये कुछ कॉमन घसे और मुंह के मैं बता रहा हूँ आपको, जो जरूर आप जो नॉर्मली हो सकता है, और आप ये चीज का इमिडिएटली जाके बात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं डॉक्टर को, स्वर परीक्षण भी कर सकते हैं, स्वर परीक्षण मुंह के इसमें कर सकते हैं, लेकिन बाकी का इसमें आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना
0: जी
1: चाहेंगे। श्रोते हो, आपण ऐकत आहात समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटल लक्ष्मीनगर नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम। आजचा आपला विषय आहे मुख कर्करोग, कारणे आणि उपचार, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर संजोग सिंग। डॉक्टर, फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम में।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, बहुत चीजें हमने जानी कि कैंसर क्या होता है, एग्जैक्टली ओरल कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। अब आता है डायग्नोसिस,
0: जी
1: तो इसे डायग्नोज कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले, सबसे बड़ा स्टेप और सबसे पहला स्टेप है स्व परीक्षण। स्व परीक्षण में आपको मुंह के कैंसर में या मुंह के कर्क रोग में 8 स्टेप्स, आप जाएंगे कभी भी इंटरनेट पे ना, एक बहुत फेमस फोटो है, उसमें एनिमेटेड फोटो है, कार्टून की फोटो है, उसमें उन्होंने 8 स्टेप्स दिखाए हैं, कैसे आप अपने होंठ को उठा के, ऊपर के होंठ को, नीचे के होंठ को नीचे करके, जबान को साइड करके, यानी ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जाना, आप खुद भी कर सकते हैं ये काम, उसमें स्टेप्स दिखाए गए हैं, तो ये आप स्व परीक्षण से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, आपको ऐसी जगह देखना पड़ेगा मिरर के सामने, और दूसरा या तो कोई सामने रहे आपका देखने के लिए, तो बहुत बार हो सकता है उसमें छूट सकता है, तो ये एक लिमिट। और आपका मुंह अच्छा खुलना चाहिए इसके कारण, अगर आपका मुंह नहीं खुलता है किसी भी कारण से, खासकर अगर आप खर्रे का प्रयोग करते हैं या पान मसाला खाते हैं जिसके कारण आपका मुंह कम खुलता है, तो फिर आप नहीं देख पाएंगे, तो उससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास चले जाएं, और नॉर्मली हर 3 महीने में दिखाते रहें। ये पहला स्टेप है निदान का, कि आप एग्जामिन करते रहें। अगर सपोज आपको अनफॉर्चुनेटली कोई छाला हो गया है, तो वो छाला आप 10, 15 से 20 दिन तक वेट करिए, देखिए ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 महीने तक भी रुक सकते हैं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा मत रुकिए, 1 महीना बहुत लंबा समय होता है ठीक होने के लिए। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और उनको देखने दीजिए, और देख के अगर वो बायोप्सी बोलते हैं, बायोप्सी का क्या मतलब होता है, बायोप्सी मतलब हम वो जो छाला है उसकी प्रकृति जानना चाहते हैं, वो किस प्रकार के सेल्स या अंश उसके अंदर है, वो हम आंखों से देख के नहीं बता सकते, वो माइक्रोस्कोप के अंडर पैथोलॉजिस्ट को देखना जरूरी है, क्योंकि जो कैंसर होते हैं उसके कुछ स्पेशल चिन्ह होते हैं माइक्रोस्कोप में, जो नॉर्मल सेल्स और कैंसर के सेल्स को अलग करते हैं, वो सिर्फ वो माइक्रोस्कोप में देख के निश्चित कर सकते हैं 100%, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो वो जो टुकड़ा निकालते हैं, वो टुकड़ा निकालने को बायोप्सी कहते हैं, और वो टुकड़ा निकाल के जांच के लिए आपको भेजना होता है, वो जांच माइक्रोस्कोप के अंडर पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, और वो करके फिर निश्चित करते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। बहुत से लोग आपको पूछते हैं आके, सर स्कैन कर दीजिए, हमारा स्कैन में बता दीजिए कि कैंसर है कि नहीं। स्कैन में मैं बता नहीं सकता आपको कैंसर है या नहीं, मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ कुछ है जो दिख रहा है मुझे, और जो यहाँ पर है जितने एरिया का आपने स्कैन किया है, मैं उसमें देख के बता सकता हूँ कि हाँ ये कुछ है, इतना बड़ा है और ये एरिया में है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये कैंसर है, क्योंकि मुझे कैंसर बोलने के लिए उसकी प्रकृति जानना जरूरी है, जो सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट मुझे बता सकते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट को, तो वो रिपोर्ट मुझे चाहिए। हाँ, निश्चित हो गया कि ये कैंसर है बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद, फिर मैं स्कैन कराऊंगा। स्कैन में हम मुंह का स्कैन, घसे का, गले का स्कैन करते हैं, और छाती का स्कैन करते हैं। बहुत से पेशेंट मुझे पूछते हैं, सर लंग्स का क्यों, आप छाती का क्यों कर रहे हैं? तो ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ कहाँ पे चला गया। अगर वो कैंसर है तो वो मुंह में है, वो गले में गया है, और क्या वो छाती में गया, ये 3 हम शरीर के किसी और अंग में गया है, ये सब से इलाज बदल जाता है। अगर सिर्फ मुंह में है तो इलाज अलग है, अगर मुंह और गले में है तो इलाज अलग है, अगर मुंह में क्या क्या पकड़ा है उसने, कितना बड़ा है, तो इलाज अलग है, तो ये सब इलाज अलग हो जाते हैं, इसलिए स्टेजिंग में इलाज बदल जाता है। और अगर वो छाती में चला गया, लंग्स में, फेफड़ों में चला गया है, तो इलाज एकदम बदल

0: जाता है और वो पेशेंट की फिर बचने की उम्मीद भी कम हो जाती है, इलाज कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये निश्चित करना होता है इलाज से पहले कि कैंसर कहाँ कहाँ पर है, इसलिए वो हम सीटी स्कैन में कराते हैं। आजकल पेट स्कैन का बहुत प्रचलन शुरू हो गया है। पेट स्कैन एक इस प्रकार का स्कैन है जिसमें न्यूक्लियर डाई दिया जाता है और वो न्यूक्लियर डाई स्पेशली कैंसर सेल्स पकड़ लेते हैं और वो कहाँ कहाँ पे वो ऐसे लाइट जल जाती है और दिखती है कि हमको यहाँ यहाँ, तो वो और निश्चित कर देता है कि अच्छा ये कैंसर सेल्स यहाँ यहाँ पे। लेकिन महंगा होता है वो, तो वो इसीलिए भी अभी जो रिकमेंडेशन होती है ना कैंसर की, जो एक हम लोग की रिकमेंडेशन होती है, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन जिसे बोलते हैं, जो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड फॉलो होती है, उसमें अभी रिकमेंडेशन में पेट स्कैन नहीं आया है कि पेट स्कैन ट्रीटमेंट के शुरू में ही कराना चाहिए या नहीं। हाँ, पेट स्कैन जब बीमारी पलट के आती है, जब मैं इलाज कर चुका हूं पूरा, पेशेंट को इलाज करके समझ लीजिए 1 साल हो चुका है, 2 साल, लेकिन फिर कुछ आया उसको, एक छाला आ गया, मांस आ गया, जो कैंसर में बहुत आता है ऐसा, तब फिर स्कैन करा के देखते हैं कि सिर्फ वही आया है क्या, क्योंकि मैं तो सिर्फ वही देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि जब पलट के आती है ना बीमारी, तो काफी जगह पे आ सकती है, फिर सिर्फ मुंह में नहीं, फेफड़ों में भी आ सकती है, लीवर में भी आ सकती है, पेट में भी आ सकती, कहीं पे भी आ सकती है, तब मुझे पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है। इसलिए पेट स्कैन जब बीमारी पलट के आती है ना, तब रेकमेंडेड है, ट्रीटमेंट जब शुरू हो रहा है तब रेकमेंडेड नहीं है, तब सिर्फ सीटी स्कैन या एमआरआई से हो सकता है काम। तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराया और ये करा के फिर हमने उसकी स्टेज निश्चित की। स्टेज निश्चित करना क्यों जरूरी है, इसमें स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसा स्टेजेस है। स्टेज से हमें क्या पता चलता है, मैं अगर पेशेंट्स को काउंसिल कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ, तो ये जो स्टेज होता है ये मुझे बताता है कि मैं पेशेंट को समझा सकूं कि ये स्टेज पे आपकी बचने की, बीमारी की पलट के आने की संभावना कितनी है। ये किसने निश्चित की है, ये न मैंने निश्चित की है न किसी और डॉक्टर ने निश्चित की है, ये एक बहुत बड़ी स्टडी होती है जो बहुत सारे डॉक्टर्स के रिजल्ट होते हैं और सालों तक किए गए हैं, उसमें से जो पैटर्न बनता है उसमें से ये निश्चित होता है। इसीलिए मैं कभी 100% आपको ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने इलाज किया तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। कैंसर में ये नहीं जवाब दे सकता मैं, कैंसर में मैं परसेंटेज बता सकता हूँ आपको कि ये इतने में से इतने लोगों का जब ऐसा इलाज हुआ था तो इतने लोगों का ये रिजल्ट आया था। तो जरूरी नहीं है कि वो 100 लोगों का वो सेम रिजल्ट आया, उसमें से 90% का ये रिजल्ट आया और 10 लोग फिर भी उसमें ऐसा दूसरा कुछ रिजल्ट आया, तो 100% कुछ भी नहीं है कैंसर में। तो ये जो स्टेज होता है ये मुझे बताता है कि स्टेज 1 की बीमारी का क्या रिजल्ट होगा, पेशेंट कितने दिन, आप देखेंगे कैंसर के पेशेंट सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, सर कितने दिन तक रहेंगे। बहुत ही निर्दयी सवाल है ये हमारे लिए जवाब देना ना, ये किसी के लिए बोलना कि आप सामने वाले को रिलेटिव्स भी पूछना चाहते हैं कि सर कितना बचेंगे, इससे दुखद जवाब कोई नहीं है मेरे लिए जवाब देना कि पेशेंट को ये बताना है रिलेटिव, लेकिन ये जवाब नहीं है हमारे पास, ये मेरे पास नहीं है इसका जवाब, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। हाँ, मैं उनको एक पैटर्न बता सकता हूँ कि इस स्टेज में इतने परसेंट लोग इतने दिन तक ठीक थे, लेकिन जरूरी नहीं आप उस परसेंट में आएंगे ना, वो आप दूसरे परसेंट में भी आ सकते हैं। तो जैसे स्टेज 1 में हम कहते हैं कि 90% लोग निकल जाते हैं, तो कोई भी कैंसर का जो रिजल्ट होता है वो 5 साल में देखा जाता है। 5 साल में देखा जाता है, इससे मतलब जो मैंने एक ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, वो पेशेंट 5 साल तक देखा जाता है कि 5 साल तक इनको बीमारी फिर से नहीं आई या ये रहे, जीवित रहे, ठीक रहे, ये 5 साल के इसमें देखा जाता है। ये जब मैं बता रहा हूं तो ये समझ लीजिए कि मैं 5 साल का बता रहा हूँ, 5 साल के ऊपर भी हो सकते हैं वो, लेकिन हमारी जो स्टडीज होती हैं सब 5 साल की होती हैं। तो जो स्टेज 1 होता है उसमें 90% लोग, 90 से थोड़े ज्यादा, ये 5 साल और उससे अधिक रह लेते हैं। स्टेज 2 में 80%, 85%, स्टेज 3 में ये 60 पे आ जाते हैं और स्टेज 4 में ये 40 पे आ जाते हैं। स्टेज 4 सबसे दुखद स्टेज है जब ये होते हैं, तो वो 40% पेशेंट, आप किसमें हैं, वो 40 में है कि आप वो 60 में है, वो मैं नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अपन इलाज पूरा करेंगे हम लोग और वो इलाज से जो रिजल्ट आएगा वो तो हमें पता चलेगा आगे, क्योंकि इलाज सबका सेम होता है।
1: डॉक्टर, इलाज की बात हुई है तो हम जानना चाहेंगे कि इलाज कैसे होता है और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट है क्या।
0: जी, तो इलाज सबसे पहले मुंह के कैंसर में तो

0: सबसे बेस्ट इलाज और सबसे बेस्ट चांस पेशेंट का बीमारी से निकलने का सर्जरी ही माना गया है आज भी। सर्जरी करके आप वो कैंसर को पूरा निकाल सकते हैं, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो आप रेडिएशन देना है, कीमो देना है। ये उस सर्जरी की जो पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट आती है जो उसमें देखी जाती है कि ये जो पूरा कैंसर निकाला गया ये कैसा निकाला गया, पूरा अच्छे से निकला है या कहीं कहीं पे पास में है मार्जिन, या ये जो इसकी प्रकृति है ये बहुत अग्रेसिव है। तो ये वो पैथोलॉजिस्ट हमको बताते हैं कि इसमें और भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है आगे। फिर अगर जरूरत है तो फिर रेडिएशन के लिए पेशेंट को भेजा जाता है। तो कोई भी कैंसर का 3 प्रकार से इलाज होता है, मुंह के कैंसर में बता रहा हूं, सर्जरी, रेडिएशन जिसे लाइट का ट्रीटमेंट कहते हैं या सिकाई कहते हैं, और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। लोगों को ये भी थोड़ी मिथ है कि कीमोथेरेपी में क्या होता है, नॉर्मल सलाइन के जो इंजेक्शन होते हैं ना वैसे ही ये इंजेक्शन होते हैं जो पेशेंट को लगाए जाते हैं, और कीमोथेरेपी इससे अलग कुछ नहीं है। बस उसमें वो जो दवा होती है उसका काम होता है कैंसर के सेल्स को मारना। तो ये तीनों ट्रीटमेंट में पूरा कैंसर डिवाइडेड है। इनका इलाज किस स्टेज में कौन सा इलाज देना होता है वो स्पेसिफिक निश्चित किया गया है रिकमेंडेशन में। स्टेज 1 में सिर्फ सर्जरी में हो जाता है आपका काम, स्टेज 2 में भी हो जाता है सिर्फ सर्जरी में, लेकिन जैसे ही आप स्टेज 3 में आते हैं वो एडवांस माना जाता है, तो उसमें आपको रेडिएशन सर्जरी के बाद देना जरूरी होता है, और स्टेज 4 में तो होता ही है। ठीक है, ये स्टेज 4 में कुछ ऐसी चिन्ह माने जाते हैं जिसके साथ कीमोथेरेपी देना जरूरी होता है। लेकिन अब कुछ ऐसी स्टडीज आई हैं खासकर टाटा मेमोरियल से, जो सबसे बड़ा हमारा अस्पताल है कैंसर का इंडिया में, जो बहुत रिसर्च करता है इस पे, उन्होंने कहा है कि जो बहुत एडवांस कैंसर्स हैं, जो पहले ऐसे कहते थे कि इनका कुछ ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते, उसमें उन्होंने कुछ कीमोथेरेपी लगाई और उसको थोड़ा कोशिश किया कि छोटा करें और फिर उसकी सर्जरी की, तो उसमें कुछ सफलता उनको मिली है। ये नहीं बोलूंगा कि सब में सफलता मिली, कुछ केसेस में उनको सफलता मिली है। तो आजकल ये कहा जाता है कि जो बहुत एडवांस कैंसर होते हैं उसमें पहले कीमो दे दें, बहुत एडवांस, मैं ये बार बार बोलूंगा, बहुत एडवांस कैंसर मुंह के, उसमें पहले कीमो दे के उसको कोशिश करते हैं थोड़ा कम करें और फिर सर्जरी करके उसका रिजल्ट अच्छा करने की कोशिश करते हैं ये। लेकिन ये बहुत लिमिटेड केसेस होते हैं, सब में नहीं। तो पेशेंट बोलते हैं पहले ही आके हमको टैबलेट दे दीजिए कीमोथेरेपी के, हमें इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन ये दोधारी तलवार है, ये अच्छा भी कर सकती है और आपका समय भी व्यर्थ हो सकता है। वो कीमोथेरेपी के इंजेक्शन जरूरी नहीं है कि सब में वही असर दिखाएंगे, तो हो सकता है आपका समय व्यर्थ हो जाए और वो डिजीज बीमारी बढ़ जाए, फिर हम ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हम देते हैं वो
1: इम्यूनोथेरेपी का या टारगेटेड थेरेपी
0: हाँ,
1: का।
0: तो इम्यूनोथेरेपी ये शुरू में नहीं देते, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, इम्यूनोथेरेपी कभी भी कैंसर की शुरुआत में, यानी मुंह के कैंसर की शुरुआत में नहीं दिया जाता। ये तब दिया जाता है जब बीमारी पलट के आई है, तब आप पेशेंट को देना शुरू करते हैं ये। और ये थोड़ी महंगी होती है इम्यूनोथेरेपी, ये स्पेसिफिक केसेस में काम करती, सब में काम नहीं करेगी। तो जब बीमारी पलट के आती है तो उसका फिर से बायोप्सी होता है, और वो बायोप्सी में कुछ एक जो चिन्ह होते हैं उसी को देखते हैं कि ये चिन्ह है क्या इसमें। अगर वो सेल्स में वो चिन्ह है तो ही वो इम्यूनोथेरेपी काम करेगी, अगर वो नहीं है तो इम्यूनोथेरेपी का काम करने का परसेंटेज काफी कम हो जाता है। और इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें सबके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि आप 2-2 लाख या 1.5 लाख का या 50,000 का इंजेक्शन रेगुलरली लगा सकें, इसलिए बहुत सोच समझ के इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। काफी पेशेंट इंसिस्ट करते हैं कि सर हमें लगा दीजिए आप, लेकिन वही इंडिकेशन होना चाहिए उसका, बिना इंडिकेशन के लगाना वो सही भी नहीं है, क्योंकि हमारी उम्मीद बनते जाती है फिर उससे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ में बहुत अच्छा रिजल्ट है जहां पे मैं वो चिन्ह दिखते हैं, इसलिए वो टेस्ट करना पहले जरूरी है। टारगेटेड थेरेपी का अभी मुंह के कैंसर में अभी उतना नहीं पाया गया, उतना रिसर्च में अभी तक ऐसा नहीं दिखा है कि बहुत असर हुआ है। तो इम्यूनोथेरेपी जब बीमारी पलट के आती है तभी काम आती है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन समय को देखते हुए आज यही रुकना पड़ेगा। डॉक्टर संजोग सिंह, आप यहाँ पर आए और मुख कर्क रोग कारण और उपचार, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन किया। आकाशवाणी की ओर से मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार। तो श्रोते हो, हा होता समसारा कैंसर केयर हॉस्पिटल लक्ष्मीनगर नागपुर प्रस्तुत हेलो डॉक्टर हा कार्यक्रम। आज आपला विषय होता मुख कर्करोग कारणे आणि उपचार, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन केलं समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर संजोग सिंग यांनी। तेव्हा मी वैदेही चौरे डॉक्टर संजोग सिंग यांच्यासोबत घेते आपली रजा। नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा

उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओ, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्ब सर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्ब सर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओ, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओ, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओ, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसाकर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओ, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओ, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर

0: पत्थर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804445559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।

0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ

0: छात्र थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
2: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
2: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
2: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
2: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
2: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
2: जी,
0: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन,

0: ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं, और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: श्रोते हो, आताच आपण NCERT द्वारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ऐकला। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।
6: आकाशवाणी मुंबई। कौस्तुभ पटाईत राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। बदलत्या जागतिक परिस्थितीत दहशतवाद आणि सायबर सुरक्षेपासून ते उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंतच्या सामायिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ब्रिक्सची भूमिका अत्यंत महत्वाची असल्याचं प्रधानमंत्र्यांचं प्रतिपादन। इराण अमेरिका कराराबाबत आखातातल्या मित्र देशांना आश्वस्त करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो 3 दिवसांच्या दौऱ्यावर। इराणमधली परिस्थिती सुधारत असली तरी तिथल्या भारतीयांनी सावधगिरी बाळगावी अशी इराणमधल्या भारतीय दूतावासाची सूचना। महाराष्ट्रात बालविवाह रोखण्यासाठी लग्नपत्रिकेत वर आणि वधूची जन्मतारीख नमूद करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील। आणि महाराष्ट्रात मुंबईसह अनेक ठिकाणी मान्सून सक्रिय, मुंबईत जनजीवनावर परिणाम। बदलत्या जागतिक परिस्थितीत दहशतवाद आणि सायबर सुरक्षेपासून ते उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंतच्या सामायिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी ब्रिक्सची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे असं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं। प्रधानमंत्र्यांनी काल नवी दिल्ली इथं ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भेट घेतली। भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात व्यावहारिक सहकार्य वाढवणं, ग्लोबल साऊथ अर्थात विकसनशील देशांसाठीच्या

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिक

0: को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +9899317935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुद्रुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने

0: बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में

जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: धीरज केदारी ही आकाशवाणी पुणे केंद्राची निर्मिती होती.
1: श्रोते हो, ठीक 6 वाजता आपण ऐकणार आहात हिंदी समाचार आणि 6:05 इंग्रजी समाचार. हे दोन्ही बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही ती सहक्षेपित करीत आहोत.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया.
3: I also refer to the unwarranted.
4: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं. ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं. मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है.
3: It has always been, is and will remain so.
2: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है. बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है. स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की. श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की. उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की. बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जूकी ने की. चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था. गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है. इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा. इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है. प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है. ये कार्रवाई कल शुरू की गई. ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है. पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए. घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढ़ीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। शियोलद नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेश मंत्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायां आरंभिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगं अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेश मंत्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसंपर्क इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्यमंत्री मनोहर लाल अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मंत्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं मेघालये, आन्तरिक कर्णाटके, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिमबंगप्रदेशे, सिक्किमराज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासरपर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार द्वीपेषु, आंध्र प्रदेशे, बिहारे, गुजराते, झारखंडे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्य प्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तर प्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तं एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 14 यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु 7 द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्ताराष्ट्रिय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमाचानु करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप

0: के क्रीडायां डी आर कांगो देशम एकम शून्यम इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देश उज्बेकिस्तान देशम पंच शून्यांकैः पराजयत् इति वार्ताः।
1: श्रोतेहो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 होत आहेत। सादर करीत आहोत कार्यक्रम क्रीडा विश्व।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार।

0: समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड

महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।

0: जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर

0: के सुनने वाले परिवार है, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरा पूरी प्रक्रिया है, ये इस बार भी विशेष है।
1: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
0: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या-क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
1: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
0: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस, जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में, अपने पिताजी को उन्होंने बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा, वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा,
0: जी जी
1: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था।
0: जी
1: पांचवी जो कैटेगरी है, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
0: जी
1: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में, 6 जो श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
0: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
1: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को

0: सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है, कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी,
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें,

0: इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है, जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं, ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो
1: जी
0: मच।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश
1: जी
2: से हूँ और मैं पैरा एथलीट हूँ, वो शॉट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक।
1: जी
2: फिर
1: जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, इसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
2: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़ा लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर

0: बहुत खुश हूँ अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी। तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए। तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं, जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इन साइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा,
2: बिल्कुल
1: और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
3: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई, एक फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ बहुत छोटा है और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको भी। हाँ

0: उसकी हालत ऐसी है। तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी स्मार्ट फ्रॉम हिम कि हाँ कैन डू वाइल कि हाँ सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ। मैं तो फिर भी अपने तो काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम। तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने तो काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक हील्स टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से। तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में। तो मेरे सुपरिटेंडेंट्स रहे थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया। काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो। तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
0: जी
1: है। हम आपसे और जानना चाहेंगे
0: जी
1: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जी मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूं कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए। उनका साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उनमें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था। तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे। मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे। तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है। तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था। तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा
1: बिल्कुल
2: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
2: संगीत का
1: जी
2: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है। तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्म भूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल

0: पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की।
1: मेरा जो एक एआई सोल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो एआई इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है।

0: है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
0: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा का विषय है। श्रोते हो, प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। रात्रीचे 10 वाजत आहेत। सादर करीत आहोत शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नादब्रह्म। श्रोते हो, शास्त्रीय संगीताच्या क्षेत्रातील एक ख्यातनाम व्यक्तिमत्व मानले जाणारे प्रसिद्ध गायक, संगीततज्ञ आणि गुरु पंडित KG गिंडे यांच्या जन्मशताब्दीचं हे वर्ष। पंडितजींचा आकाशवाणीसोबतही गहिरा ऋणानुबंध होता। आकाशवाणीच्या संग्रहातील ही त्यांची 2 दुर्मिळ ध्वनिमुद्रणं। पंडित KG गिंडे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने त्यांच्या स्मृतीला समर्पित करीत आहोत। तर आपण सुरुवातीला ऐकूया पंडित KG गिंडे यांनी गायलेला राग सावनी बिहाग। विलंबित बंदिश आहे झप तालात आणि द्रुत बंदिश आहे एक तालात निबंध। यांना तबला साथ दिली आहे शंतनू पणशीकर यांनी आणि हार्मोनियमची साथ दिली आहे रमाकांत होनप यांनी। हे जे ध्वनिमुद्रण आहे ते 1994 सालचं आहे। तर ऐकूया पंडित KG गिंडे यांनी गायलेला राग सावनी बिहाग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य

0: विषय को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।